जो सेवै तुद जी, जन नानक तिन कुरवाणा, हर त्यावै तुद जी, से जन युग में सुखवासी।

इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो परत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाद मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा।

चाय कृपा करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखे अनको शय करता श्री अस्तुजा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछित फल।

चारू। तितगर गाव हो सोहिला, सिवर हो सृजन हारो। तुम गावो मेरी निर्भव का सोहिला, हो वारी जित सोहिले सदा सुखोय रहाओ। नित नित जी।

सहस तब नैन नानैन है तो एको सहस मूरत नन्ना एक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए तिस दै चानन सब मह चानन होए।

है। ज्यों ज्यों चलहे चुभे दुख पाव है, जम काल सह है सिर डंडा है। हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पव खंडा है।

पतिता भिक्खु है, वह उसका विश्वास न हुए। जिसकी वस्त्र धागे रख है, प्रभु का माना मात है, उसे चौगुन करे निहार। नानक साहिब सदा दया रंग पैद माया की ही सर्वपर्वत जान नियत। बिरख की छाया सिंह रंग लावे, ऊह बिन सब मन पछतावे। जो दीसा सुचालन हार लपट रही हो, तहां दानदार बटाऊ। सिंह जो लावे निहता को हाथ नावे की, मन हर की नाम की प्रीत सुखदाई। कर कृपा नानक पिलाई लाई, मिथ्या तन तन कुटंब सुबाया। मिथ्या हो में ममता माया, मिथ्या राज जोवन तन माल। मिथ्या काम क्रोध विकरार, मिथ्या राथ हस्ती असब वस्त्र। मिथ्या रंग संग माया पीख हस्ता, मिथ्या त्रुह मुह मर। मिथ्या आप सुपर कर्त को माया नास, थिर भगत साध की शरण। नानक जाप जाप जीव हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ कव हिर है। मिथ्या नेत्र पीखत पर त्रिय रूपाद, मिथ्या रसन भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को दावे है, मिथ्या मान पर लोलवा। मिथ्या तान नहीं पर पुकार, मिथ्या बस रेत विकार बिन बुझी। मिथ्या सब पाई सफल दिख, नानक को हर नाम लाई। व्यर्थी सागत की आर जाय, साज बिना कह हुत हुचा। व्यर्थ नाम बिना तनंद, मुखावता का दुर्गंध बिन सिमरन। दिन रैन ब्रथाय बहाय, मेघ बिना जो खेती जाय। गोविंद भजन बिन व्यर्थी सब काम, जो कृपन के नरार्थ दाम। तान तान ती जान जिह काट, बस हर नाम। नानक तक बल बल जाओ, रहत अवर कछ और कुमावत। मन प्रीत मुख कंड लावत, जानन हर प्रभु प्रवीण। बाहर पीख न काहु पीन, अवर अवधि साप न करे आवत। जब जन्मा मराज कंदर बसा निरंकार, उदय किसी तरह संसार। जो तुम पाने तुम प्रभु जाता, नानक कुंजन चरण प्रात। कर बेंदी पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप है मान। आप है आप, आप करत नीरा कह तू जनावत। कह बजावत नीरा उपाव, श्याम सकल तेरह तू। साब काश जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लई लड़ लाए। थान थनांतर रहे समाय सो सेवक, जिस कृपा करी निमख। निमख जब नान करी सलोका, अंकरो दरलो मोह बिन सजाव। नान प्रभु शरण आगति, कर प्रसाद गुरदी वष्टपति। जिह प्रसाद क्षति अमृत खाही, दस ठाकुर को रख मन वाहि। जि प्रसाद सुगंधत तन लावे, दुख सिमरत परम गत पावे। जि प्रसाद बस सुख मंदर तिसै त्याय सनमानंद। जय प्रसाद बस सुख मंदर तिसहि आय सदा मानंदर। जय प्रसाद गृह संग सुख वसनाट पहर, सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग राख भुगनान, सदा तिहाई है ध्यान जोग। जय प्रसाद पाठ पुटंब रखंडावै, तिसै त्याग दबलवा। जय प्रसाद सुख सीज सोई, जय मनाठ पहर ताका जह का बीजा। जिह प्रसाद तुझ सब को मन मुहता को, जस रसन बखान। जय प्रसाद तिरु रहता तरुमा, सदा तिहाई की पार ब्रह्म प्रभु। जब दर्घ मन पावे, नानक पाद सिद्धि कर जावे। जिह प्रसाद आरु कंचन देख लेव लाव, हरम स्नेह। जय प्रसाद तेरा उला रह तू मन सुख पावे, हर हर जह कह तू। जय प्रसाद तिर सगल छदर ठाक, मन सरणी पार ठाकुर प्रभु ताक। जय प्रसाद तुझ को ना पाहु, चमन सा सा सिमर प्रभु। जय प्रसाद पाई दुर्लभ दी, नानक दाग भगत करी। जय प्रसाद आप उखन पहरी, जमन दे सिमरत बारस की जाय। जय प्रसाद सब हस्ता सवार, मान देह प्रभु काओ कब न बसार। जय प्रसाद बाग मिर्ख तना राख, प्रभु प्रभु अपनी मना। जिन तेरी मन बना तो बनाई, उठ बैठ तो सद तिसह दियाई। तिसह दियाई जी कालक है, ईहा उहा नानक तेरी रखा। जिह प्रसाद करहि पुन बहुदान, मनाठ प्रकार तुसका ध्यान। जिह प्रसाद तू आचार व्याव, हरित प्रभु कौ सास सह चतारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरह सदा अनु। जिह प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा नराज। जिह प्रसाद तेरी पात रह, गुरु प्रसाद नानक जा सकह। जिह प्रसाद सुनहि करुण नाद, जिह प्रसाद पीख विस्माद। जिह प्रसाद बोले हमरा दरसना, जय प्रसाद सुख सहज वसना। जय प्रसाद हस्त कर चन, जय प्रसाद संपूर्ण फरा। जय प्रसाद परम गत पावे, जिह प्रसाद सुख सहज समाव है। सब प्रभु त्याग बरकत लाग, गुरु प्रसाद नानुमान जाग। जय प्रसाद तुम प्रकट संसार, तिह प्रभु का मूर न मन बसार। जय प्रसाद तेरा प्रताप री मन मूढ़, तू ताको जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसा जान मन सदा है जुरे। जिह प्रसाद तू पावे हंसा, जुरे मन मेरे तू तास राज। जिह प्रसाद सब की गा दुई, नानक जाप जापै जाप सोय आप जो पाई। जापै सुना आप गाव, आय सुहर गुन गाव। प्रभु कृपा दुख प्रकाश, प्रभु दया कौन प्रभु सुप्रसन्न।
बस आया मन सो प्रवत आया तुम तू तुम ये सर्व निधान प्राप्ति मैं आया पहु कछु न गन हो लया जित जित लाभ हो तित लग हर नाथ नानक किन कह कछु न श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सूए जो जो कह सुमुख दहि सुन मीता नानक बिनवंता साध जनक गया चरज कथा अष्टपति साध का संग मुख उजल हो सा संग सगली खोत साध भंग मिटे अब मन साधु हम प्रगट सु ज्ञान साधु हम पूजा ब्रह्म नीरा सा संग सबोधन बेरा साधु के संग पाय नाम रत्न साधु के संग एक प्रजतन साधु की महिमा वर्ण कान पुराण नानक साधु शोभा ब्रह्म समान साधु संग गोचर मृत साधु संग सदा प्रफुल्ल साधु संग आवह वह पंचा सा संग मृत रह पंचा साध संग हुए सब गिरीन साधु के संग नोहर बैन साधु के संग न कद हूं दाव साधु संग अस्त तुम्हारे पाव साधु संग वाय दुपियन साधु संग नान प्राव सो प्रसन्न साधु संग दुश्मन समीत साधु के संग महापनीत साध संग केस सिंह नहीं बैर साधु का संग नीघा पैर साधु संग नाह कुमंदा साधु संग जन परमानंद साधु संग नाह हताप साधु संता जा सब आप आप जन साधु बढ़ाई नान साधु प्रभु बनाई साधु के संग न कबू सताव साधु संग सदा सुख पाव साधु संग बसा गोचर लह साधु के संग आजार सह साधु के संग बसा थान ऊंचा साधु के संग वह पाय सुचाय साधु हम दृढ़ सब धर्म साधु हम केवल पार ब्रह्म साधु के संग पाय नाम दहन अनु साधु के कुर्बान साधु हम साव को धार साधु संग साज मुजित पटाम ने हतार साधु के संग सोत अनु पाव जह तंत साव को बरसाव साधु संग धर्म राय करे सिवा साधु के संग सोवा सुर दिवा साधु के संग पाव पलायन साधु संग अमृत गुण गायन साधु के संग श्रवधान काम नानु साधु हंग सफल जनाम साधु संग नहीं काश काल दर्शन पीड़ित होत नहाय साधु के संग कलूख तहर साधु संग नरक पर हर साधु के संग ईह उह सुहिला साधु संग बिशरत हर मेला जो ईशाय सुय फर पाव साधु के संग नव्रता जा पार ब्रह्म साधु रत बस नानक उतराय साधु सुन रस साधु के संग सुनो हर नाम साधु संग हर गुण गायो साधु संग नवंत बिसराय साधु संग सर पर निहतराय साधु के संग लगो प्रमीठा साधु के संग काट का डीठा साधु संग पय आज्ञा कर साधु संगत पय हमारी साधु संग मिटे सब रोग नानक साधु भेटे संजोग साधु की महिमा बिगत न जान जीता सुन देता बखिया न साधु की उपमा देहो गुण ते दूर साधु की उपमा रही भारपूर साधु की शोभा का नाश अंत साधु शोभा सदा भी अंत साधु शोभा उजते उजे साधु शोभा मुझते मुझ साधु शोभा साधु बने आयु नान साधु प्राप्ति यदना पाय श्लोक मान साचा मुख साचा सोयावर न पी खै कसबिन कोई नानक इह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा नर लीप जह जल मह कमल लीप ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दोख जह सूर सर्व का सोख ब्रह्म ज्ञान का दृष्ट समान जैस राज रंग कौला का रूपवान ब्रह्म ज्ञान का तीर जे क्यों वसुदा को खुदय को चंद्रे ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाय नान ज्यो पाव का सह स्वभाव ब्रह्म ज्ञान निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञान का मन हो प्रकाश जह तारू प्राक ब्रह्म ज्ञान का मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञान का न अभिमान ब्रह्म ज्ञान ऊचते ऊंचा मानव है शब्द नीचा ब्रह्म ज्ञान सिय जन पाये नानक जन प्रभाव करिय ब्रह्म ज्ञान सकल गिरी नया तुम रह ब्रह्म ज्ञान चीना ब्रह्म ज्ञान के सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञान दिखाश बुरा न पाया ब्रह्म ज्ञान सदा सौंदरसी ब्रह्म ज्ञान की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञान बंधन तिमुखता ब्रह्म ज्ञान के नम्र जुगता ब्रह्म ज्ञान का पूजन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञान एक उपराह ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञान पर उपकार माह ब्रह्म ज्ञान का न तंदा ब्रह्म ज्ञान लिता बंधा ब्रह्म ज्ञान का हुए सो फला ब्रह्म ज्ञान सो फल फला ब्रह्म ज्ञान संग सगले अंधार नान ब्रह्म ज्ञान जाओ पाय सगल संसार ब्रह्म ज्ञान का एकारंग ब्रह्म ज्ञान का बस प्रभ संग ब्रह्म ज्ञान का नाम आधार ब्रह्म ज्ञान का नाम परवार ब्रह्म ज्ञान सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञान अहम बोध त्यागत ब्रह्म ज्ञान का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञान का कर सदानंद ब्रह्म ज्ञान सुख सहज वाहन ब्रह्म ज्ञान का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का पीता ब्रह्म ज्ञान एक संहिता ब्रह्म ज्ञान का हुआ चंद ब्रह्म ज्ञान का नरुणवंत ब्रह्म ज्ञान जिस कर प्रभा ब्रह्म ज्ञान का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञान का दर्श बड़ पाग पाई ब्रह्म ज्ञान का बैल बल जाइय ब्रह्म ज्ञान का जहमेश्वर नान ब्रह्म ज्ञान आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञान की कीमत नाह ब्रह्म ज्ञान का सगर मन माह ब्रह्म ज्ञान का कौन जाना पियत ब्रह्म ज्ञान को सदा दी ब्रह्म ज्ञान का कथिया न जाय अदा की और ब्रह्म ज्ञान सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञान की मित कौन बखाना है ब्रह्म ज्ञान की गात ब्रह्म ज्ञान जाना ब्रह्म ज्ञान का अंतरा पैर नान ब्रह्म ज्ञान का सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञान सब श्रेष्ठ का करता है ब्रह्म ज्ञान साध जीव है न मरता ब्रह्म ज्ञान मुक्त जोगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञान पूर्ण पुरुष विधाता
ब्रह्म ज्ञानी अनाथ अनाथ ब्रह्म ज्ञान का सब प्रहात ब्रह्म ज्ञान का सकल आकार ब्रह्म ज्ञान का निरंकार ब्रह्म ज्ञान का शुभ ब्रह्म ज्ञानी बनिंदान ब्रह्म ज्ञान सर्व का धन श्लोक उतार जो अंतर्नाम सर्वपीख भगवान निमख निम ठाकुर नमस्कार नानक हुआ परस सगल निहता राष्ट्रपति मिथ्या ना रसना परस मनम प्रीत निरंजन दरस उपर त्रिय रूप न पीख नेत्र साध की टहर संत संगीत करना सना काहु की निंदा सब जाने आवश्य कमंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हर मन की बहन मन दि टरा इंद्री जेत पंच दोह दे रह नानकूण मध्य को ऐसा परस वैसनो सो जेहु प्रसो प्रसन्न विष्णु कुमाया दि हुई पेन कर्म करत हुए निह कर्म दह वैष्णो का निर्मल धर्म का फल की इच्छा निह बाछा की ओर भक्त कीर्तन संग्राचा मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब प्रबोध कृपाल दृढ़ अवरहना जपाव नानक वैष्णो कर्म का दुपाव भगवती भगवंत भगत कर सक त्याग दुष्ट का संग मान ते बिन सा सकला परम कर पूजा सकल पार ब्रह्म सा संग पापा मर कुवे दह भगवत की मा दूत मुवे भगवंत की टहल कर नित मान तन अर पा विष्णु प्रीत हर की चन हृदय सब नानक भगवती भगवंत काउ पाव सुपंडित जो मन प्रबुद राम नवादम सोद राम नमसार राह पीवा सुपंडित का उपदीस जाग जीव हर की कथा हृदय सब सुपंडित फिर जो नाव मेद प्राण समृत पूजा मूल सुख मह जान सतूल जह वर्ण कुदे उपदीस नानक सुपंडित कव सदा दीस बीज मंत्र सर्व को ज्ञान जह वर्ण नाम जाप को नाम जो जो जप दुष्गा तो सत्संग पाव जन कोय कार्य कृपा अंतर्वरतार पास प्रेत मुक्त पात्र कवतार सर्वरोकाय औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गायम काहु जुगत के तन पाय धर्म नान दह मेला जस लिखा दुर्कर्म जिसके मन पार ब्रह्म कनवास तस्क नाम सत रामदास आत्म राम तिह दृया दह दसंतरण पाई तिन पाय सदा निकट निकट हर जान सुदास दर्घ परवान अपने दाह को आप कृपा कर दह दाह कव सब सोजी पर सगल

जाओ कमान हुए कहना अनुता कि निर्मल सोई जाव लग जाना मुझ ती काश हुए तब उसका सुख ना ही कोई जावे है जाना मैं किस करता तब लाग करो जोन में फिरता जब तारे को बैर मीत तब लाग नीह चलना ही चीत जब लाग मुह मगन संगवाय तब लाग तनुराय दी सजाई प्राव कृपा ते बंधन टूट गुरु प्रसाद नानक हाओ छूट सहस खटी लाख कौठ तावे त्रिवतना आवे माया पाछा पवन भोग बिखिया की कर नह त्रिवतावे खाब खा मर बिना संतोख नहीं कुरा जय सपन मनोरथ वृथ सब काज नाम रंग सर्व सुख होए बड़पागी कसा प्राप्त हुए कर्ण करावन आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावन करने हार इसका हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करी तैसा हुआ पिया पुआ प्राप्त हुए जो किस गिनो स्वपना रंग सब दूर सब का संग बुक जा दिखा कर बी का पही का पहनी कुमार नवन सया बना जाय नान साधु रहे असमाय आप उपदेश समझ आप आप रच सबका साथ आपकी नापन विस्तार सब काश उस काहु करने आरुस्ते पेन कहु किश होए था धनंद्री का सोए अपने चलत आप करने आर कौत कर रंग आप मर मन अपनी माह नानक कीमत कहना जाय साथ साथ सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद कहना बखिया नहीं सच सच सच सब किन्ना कोट मध्य कहना बिरला चिन्ह पला पला पला तेरा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल त्रिवाणी काट काट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्रिय श्लोक संत सरन जो जन पर सो जन उदरन हार संत गिनंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपद संत का दुख नार जकट संत का दुख जाम तीन छोटा संत का दुख नर सुख सब जाय संत का दुख नर गुमा पाई संत का दुखन बात हुई मुदीन संत का दुखन सोबतहीन संत के हति कब रखा नाम कोई संत का दुख थान प्रष्ट हुए संत कृपा कृपा जी कर नानक संत संग नंदक बीतार संत के दुखन दे मुख पावै संतन का दुखन काग जो रह संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन कृमवाए संतन का दुखन त्रसना मह जरा संत का दुखन सब कुछ आलाय संत का दुखन तीर सब जाय संत का दुखन नीच निचाय संत दुखी का था को नाही नान संत पावे ता हुई पी गत पाही संत कनंद को महाताई संत कनंद का खेम टिकना पाए संत कनंद को महाहति आर संत कनंद को परमेश्वर मार संत का नंद कर आज तिहीन संत का नंद दुखी आर दीन संत के नंद का सर्व रोग संत के नंद का सदा बजोग संत के नंद आय दुख में दुख नान संत पावे तो उसका भी हो मोख संत का दुख सदा उपवेत संत का दुख के सह का नहीं वेत संत के दुखी का डान लाग संत के दुखी का सब त्याग संत का दुख महाअहंकारी संत का दुख सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरा संत का दुख ना सो दे टारा संत का दुखी का नाहि ठाउ नान संत पावत लय मिलाय संत का दुखी अद्वित टूटा संत का दुख कदा का ना पूछै संत का दुखी आद बीच ते टूटै संत का दुख कता काज न पाहुचै संत का दुख कौ दया अनु परमाई संत का दुख उजड़ पाई संत का दुख अंतर तीर्थ होत है जो सास बिना मेर तक किलो था संत के दुखी की जड़ की सना है अपन भी जाप ही खाही संत के दुखी का वरण रखना नानक संत पावत लय उभार संत का दुखी यो बेल राय जो जल भी हून वसली तड़ फड़ाए संत का दुखी पूखा नहीं राज जो पाप की नहीं त्रापे संत का दुखी छुटया केला ज्यो गुआड़ तेरी खेत महंदु हेला संत का दुखी तरम तेरा है तो संत का दुखी सदम थया कह तो करत नंद का दुखी पया नानक जो थे पाव सुई थिया संत का दुखी विकट रूप हो जाए संत के दुखी का दरगाह मिला सजाई संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरा न जीवाई है संत के दुखी पूजा न आसा संत का दुखी उठ चला नरासा संत का दुख न दृष्टा कोई जह पावे तैसा कोई हुए पया करत न मेटा को नानक जाना सच्चा सोई साब काट दुष्गह करने आर सदा सदा दुष्का नमस्कार प्रभु की उस्तत करहु दिन रात दुष त्याव हो सास ग्रास सब काश्वर दुसका किया जैसा करी तह कुथिया अपना खी लाभ करने यार दूसर कवन कह विचार जिसन कृपा करे तो सब नाम दी बड़ भागी नानक जान सी श्लोक तज हो स्यान सुर जन हो सिमर हो हर हर आई का सार मन रख नानक दुख परम पो जय अष्टपति मानुख की टीक वृथि सब जान जीवन कई कह भगवान जिसका दिया रह आगाई बहना त्रसन रा गया मारे न रख वर न कुए मारा राख कुआप मानु कह कृष्णा हाथ दुष्का कुंभूज सुख होय दुष्का नाम कंठ पर होय सिमर सिमर सिमर पर सोय नानक विघ्न न लगा कोई उस्तत मान महंक
कारण रंग कार कर मन मेरे सद व्यवहार निर्मल रसन अमृत पियो सदा सुहेला कार निह जियो नयन पीर ठाकुर का रंग सा संग बिन सा सब संग चरण चलो वार गोविंद मिटह पार जपिया अरविंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दर्ग नान पूजन मथा बिट पागी ती जान जग माहि सदा सदा हर गुण गाहि राम नाम जो करह विचासी धनवंत गण संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जान होती सुखी एक एक एक पछान तोत की हो सोजी जान नाम संग जिस का मन मानिया नानक तिन निरंजन जानिया गुरुप्रसाद आपना सो जाय तुह जन तृष्णा बूझ है सर संग हर हर जह कह तो सर्व रोग त्योह हर जन रहत आनंदन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आशा तस कट गया जम खा स पार ब्रह्म जिस मन पूख नानक तिसहना लागह दुख जिस कोहार प्रा मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं उठलाव जह प्रभ अपना कृपा कर सो सेवक कहु गह ते डर जय ससा तह दृष्टाया अपने कार्य में आप समाय सोदत सोदत सोद सी जया गुरु प्रसाद तथा उगजया जब देखा तब सब नान सो सुखम सोया स्थूल नह किस जन्म नह मरे आपन जलदा अभि कर आवन जावन दृष्टा दृष्टा का कार्य तार सब श्रेष्ठ आप ही आप सकल में आपन के जुगत राज था भी अथा आप अपना सीना है किसी घट तारण तारे हो ब्रह्मांड अलग के अपि उपरुख प्रताप आप जो पाए तनान के जाव जन प्राप्त जाता सो सो बाबंत सकल संसार उदरा तन मंद प्राप्त के सेव सकल उदारण प्राप्त के सेव दुख विसारण आप ही मिल लय कृपा गुर का सब जा पाए निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा कर हम बड़ भाग नाम जब पाव हम विश्राम नानक तन पुरख का उदम कर मारन जो किस कराय सो प्राप्त करांग सदा सदा बस हर संग सहज सुभाय हुआ सो करण यार पुषाण से प्रभु का किया जन्म गान जैसा सा तह दृष्टा न जह ते उपजे ते हमाय समाय सुखन दान उन बनाय आप कौ आप दिनो मान नान प्रभु जानि को जान श्लोक सर्व कला पार पूर प्रभु अर्थ जानन हार जा कर सिमरन उदरिया नानक तह बलहार अष्टपति टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया विप्रद पाल सगल की चिंता जिस मन वाहि दहित व्यर्था कोई ना हरि मन मेरे सदा हर जा प्रभनास प्रभा प्रिया पापन किया कृष्णा हुई जी सब प्राणी लोचा कुए दिस बहना ना तेरा किस काम गत नानक जा पी हर नाम अरूप बंद हुए ना ही मोह है प्रभु जो सगल काट सो है धनवंता हुई क्या को कर वह जन सब किश तस्का दिया दर वह तो सूरज को कहावे प्रभु की कला बिना कहता वह जी को हुए वह दातार तिस दिन हर जन गावर जिस गुरु प्रसाद टूटे हाव रोग नानक सोजन सदा रोग ज्यों मंदर काओ थम थम त्यों गुरु का शब्द मन हाव थम न ज्यों पा खान नाव चढ़ तर प्राणी गुरु चरण लग दन तर ज्यों अंधकार दीपक प्रकाश गुर दर्शन दीख मन हुए विकास ज्यों महावदयान महमारक पाव त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे त्यों संतर की बाछ तू नानक हर दूचा पुर मन मूर्ख काहे बिल लाई पूर्व लिख कर लिखिया पाई दू सुप्राव दीवन हार वर त्याग तू ते सह चतार जो काश करे सोई सुखमान पूला काहि फिर जान कौन बसताई तेरा संग लपट रही रास लोभी पतंग राम नाम जाप हृदय माह नानुपात सीति कर जाहि जिस वखर कौलै अंधुआ राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लिखो मन मोर राम नाम हृदय मह दोला दुखियो संत है संग चार वर्त योग विखिया जंजाल तन तन कह सब कोय मुख उजलार दर्ग है सोई हो वापार विरला वापार नानु ताक सदबलहार चरण साध की तुहे तो पीवर साध को अपना जीव साध दूर कर स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा बट पागी पाई साध संहार कीर्तन गाइए अनक बिगंध साध दूर आख हर गुण गाय अमृत राह चाख उठ गई संत है दराया सर सुख नानक तिह पाय अमृत कहु जीवाल नार भूखे कहु देवत आधार सर्वन धान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिख कलह ना पाही सब के हित का हो करना जोग तिस बिन दूसरो है ना हो जाप जान सदा सदा दिन रहनी सब तू जन निर्मल करण कर कृपा जिस कव नाम दिया नानक सो जान निर्मल थिया जा का मान गुर की प्रतीत कह जा नाव हर प्रवचीत भगत भगत सुन गया तिह लोए जाग हृदय एक हो सच करण सहता गिरह तू सच हृदय सतम कह तू सच दृष्ट सच आकार सच वर्त सच अपार पार ब्रह्म जन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता श्लोक रूप नारी नरंग केश त्रिगुण ति प्रापेन तिसे बुझाई नानक अज हो सो प्रसन्न अष्टपति अविनाश ब्रह्मान महाराख मानुख की तू प्रीत त्याग तिह ति पर नाह किस को सर्व निरंतरी कुश व्यापी बिन आपी दान गहर गंभीर गिहीर सुजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा न धान दयार भक्त संसार तेरे की चरणी पाव नानक मन अनुराम मन सब पूर्ण शरण जोग जो कर पाया सोई होग
ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕੰਧੀ ਤਰ ਹੋਰ ਤਿਖ ਮਨ ਤਰਨ ਰਾਜਾ ਨ ਹੋਰ ਅਨੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਤ ਜਾ ਕੇ ਸਰਥੁਖ ਸੁਨਿਹ ਕਰ ਤਾਕ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ ਤਾਪ ਮਹਿ ਤਪੀ ਸਰਗ੍ਰਸਤ ਮਹਿ ਭੋਗੀ ਤਿਆਈ ਤਿਆਈ ਭਗਤ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਪੁਰਖ ਕਾਇਕ ਨੈ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮੇਤ ਨਾ ਸਗਲ ਦੀਵਾਰੀ ਅਵਗਾਹੀ ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮੇਤ ਨਾਹਿ ਸਗਲ ਦੀਵ ਹਾਰੀ ਅਵਗਾਹੀ ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੀ ਜਾਨ ਪੂਤ ਸਗਲ ਪੁਰ ਆਪਣਾ ਸੁਸਮਾਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਜਾਂਦਾਸ ਨਮ ਧਿਆਵੈ ਹਸੀ ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਮਹਿ ਜਾ ਕੁ ਪਰਮਾਈ ਜਨਮ ਮਾਰਾ ਫਰਾਵਾ ਜਾਇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੀ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਦਸ ਨਾਨਕ ਜਾ ਨਨ ਰੂਪ ਨਨ ਜਾ ਕਿਰੰਗ ਨਨ ਪੀ ਕਰੈ ਕਿਰੰਗ ਨਨ ਵੇਦ ਕਿਨ ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰਭਮ ਰਾਸੀ ਕੰਕਾਰ ਨਨ ਚਲਦ ਕਰੀ ਖਿਨ ਵਾਹਿ ਪੂਰਹਿ ਹੁਕਮ ਸਭ ਠਾਇ ਨਨ ਵਿਦ ਕਰ ਬਨ ਤਬੰਦਾਇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪ ਹੀ ਪਾਈ ਸਭ ਘਾਟ ਤਿਸਕੀ ਸਬਦ ਕਿਠਾਉ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵਨ ਨਨ ਖਰ ਨਾਉ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਬੀਤ ਪ੍ਰਾ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸੋਨਨ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਆਗਾ ਸੁਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਤਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਪਾਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੋਨ ਸਰਾਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇ ਨਾਨਕ ਚੌਥੀ ਪਾਦ ਮਹਿ ਸੋ ਜਨ ਕਤ ਪਾਇ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੇ ਬਾਣ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹਿ ਸਮਾਨ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੇ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਾਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਰੀ ਜਿਸ ਬੁਝਾਈ ਤਿਸਹਿ ਸਭ ਪਰੀ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਇ ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰਤੇ ਪਾਏ ਸਤ ਵਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇ ਸਤ ਤੀ ਜਨ ਜਾ ਕਰਦ ਪ੍ਰਵੇ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਤਾਗੀ ਗਾਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਗਿਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਾਤ ਜਿਸਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਨੇ ਹਰ ਮਨ ਬੂਝ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮਿਤ ਨਾ ਜਾਣ ਕਿਆ ਨਾਨਕ ਜੋਧ ਪਾਇ ਸੋ ਵਰਤੀ ਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਪਏ ਬਿਸਮਾਇ ਜਨ ਬੂਝਾ ਤਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕਾ ਭਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੀ ਉਏ ਦਾਤੀ ਦੁਕਾਟ ਨਾਰ ਜਾ ਕਾ ਸੰਗ ਤਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੁਵੜ ਪਾਕ ਜਨ ਕਾ ਸੰਗ ਇਕਲੇ ਵਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿਤ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਨੂੰ ਹਲ ਪਾਇਓ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗ ਆਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀਓ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੇ ਸੱਚ ਹਰਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਸੰਨਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸਿਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਵਿਖਨਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤ ਆਵਨ ਹਾਰ ਆਵ ਸਤ ਸਤ ਸਵਤਾਰੀ ਆਪਿ ਗੁਣ ਆਪਿ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਭ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਰਹਿਤਾ ਜਨਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਛਾ ਨੇ ਜਾ ਕਰਦਾ ਵਿਸਵਾਸ ਪ੍ਰਭਾਇ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹਮਾਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਪੈ ਤੀ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਮਾਨਾ

जब निर्गुण प्रभु सहज सुभाई तब सब सकत कहु कित ठाई जब आप आप अपने जो तरह तब कौन निडर कौन का डर है आपने चलत आप करण आर नानक ठाकुर में अपार बनासी सुख अपना सन तह जन्म वरण कहु कहा बनासन जब पूर्ण करता प्रभु सोई तब जम की त्रास कहु कि सोए जब अवगत या गोचर प्रभु कथा चित्रगुप्त कह पूछत लिख जाव नाथ निरंजन गोचर गादि तब कहु छुटिकन बंधन वादि अपना बाभी अचर जा नानक अपन रूप आभि अपर जा जह निर्मल पुरख ओ पुरख पा तोता तह बिन मैल कहु क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौन वान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहु की स जह जो स्वरूप जो संग समाव तह किस पू कौन द्रवता कर्ण करावन करण नान कर दिका नाह सुमार जब अपने सुभा अपन संग बनायु तब कौन वाय बाप मित्र सुत पाई जहाँ सर्व कलाया पह प्रवीण तह वेद गति कह को चीन जब अपन आप आवर तार तो सकन अब सकन कह विचार जहाँ अपन ऊचा अपन आप नीरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चीरा विस्मर विस्मर विस्मार नानक अपने का जान हो आप जहाँ शाल शेद पीत समाया ऊहा के सब आत्माया उसको आप आदि सतेह गुण का नाह प्रवीस जहाँ एक एक भगवंता तह कौन अचिंत कहला का चिंता

त्यो प्रपंचकार त्यो गुण मह किन व्यवस्था रूपा पुनः तह पई कहावत कुनर कौशर वंशावत आल जाल मय जंजाल हौम मुह परम पार दुख सुख मान अपमान अन्य प्रकार की उपख्यान आपन के लाभ कर दी है खेल संकोचा तो नानकी कह जह जह अवगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दोहु पह कया पह तन उनकी सुबह अनुह बनिया पह कौत कर आनंद चो जा पह रह भुग निर्जोग जह पावत सप नाय लावे जह पावत कील खिलावे बी संवार अथाह अगनत अतुल ज्यों बलाव त्यो नानक दाह बोल सलोक जी जंद के ठाकुरा आप वर्तनार नानकी कुपसरिया दूजा कह दृष्टा रसपद आव कथा सन निहार आप ही का विस्तार जात पावतन श्रेष्ठ उपाय अपना पाण ले समाय तुम दिपेन नहीं किशो अपन सूत सब जगत पुर जा कौ प्रभ जीवा बुझाय सचना सो जन पाए सुसौंदर सीता कविता नानक सर्वश्रेष्ठ का जीता जी जंत्र सवता।

अंग। जय जय सवदाना हदवा जय सुन सुनंद करि प्रभुका जय प्रगटि गोपाल महातक माथि नानक कुदरत का साथी सरण जोग संसरणी आई कर कृपा प्रभा मिलाई मेट गए बैर पय सबरी अमृत नाम साध संग लय सुप्रसन्न पय गुरुदेव पूर्ण हो सेव की सेवाल जंजाल विकार ति रहति राम नाम संरसना कहती कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि की पय तुम्हारी कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि की पय हमारी प्रभु की उस्ताद करहु संत मीत सावधान एकाग्र चित सगुण सहज गोविंद गुण नाम जिसमर बसा सोत निधान सर्वेच्छा ताग पूर्ण हुए प्रदान पुरख प्रगट सबलो सबते ऊच पाय स्थान बाहर न हुए आवन जान हर तन खाट चला जान सुय नानक जिस प्राप्त तो हुई खीम शांत रिद नावन यद बुद्ध ज्ञान सर्वधन सिद्ध विद्या ताप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम सनायन चार पदार्थ कौन प्रकाश सब का मद सकल देव दास सुंदर चतुर्तात कवियता समुद्र शीर दृष्टियता यह फाल तेह जान कह मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने इहु निदान जपै मन को सब जुग महता गिगा तु गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमर शास्त्र वेद बखाणी सकल मतांत क्यूला नाम गोविंद भगत का मन विश्राम कूट अपराध साध संग मेटा संत कृपा ति जम दि छुटा जाकर मस्तक कर्म प्रापाय साध शरण नानक ति आय जिस

संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राति रुति थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तस्वी धरती थाप रखी धर्मशालम।

दान हैं, द्रवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजेय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूज हैं, अचंज हैं, अमीघ हैं, रफीक हैं, अतंद हैं, अबंध हैं, निर्भूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अलह हैं, अजह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अली

फिर एक है भुजंग प्रयाद छंदम। नमो सर्व माने समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे, नृसंगी प्रमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ती विभूते कलंग बिना ने कलंकी स्वरूपे। नमो राजेश्वर परम रूपे, नमो योग योगेश्वर परम सिद्धे, नमो राजेश्वर परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो वस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोक माता भिखी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो योग योगेश्वर परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साह नमो पू पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नानंग, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणाशी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धा बुद्धा बृदकर्ता अदो उर्द अर्धंग अघंग ओघर्ता परम परम परमेश्वर पौष्पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अभेदी अनामंग कामंग समस्तोपराधी समस्तस्ततामंग तेरा जोर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपीस हैं पुजंग प्रयाद शांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे। नम सर्वमान्य समस्त निदाने, नमस्तु नरनाथे, नमस्तु प्रमाथे, नमस्तु अगंजे, नमस्तु अपंजे, नमस्तु अकाले, नमस्तु अपाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राजराजे, नमो साजे, नमो सासाहे, नमो नमो माह

अदृश अकृश भगवती छंद उत्व प्रसाद कथ ते के अशिज देश है के अभिज भिष है के अगंज कर्म है के अभंज भरम है के अभिज लोक है के अदित शोक है के अवतूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वा अपरण है के जगतंग कृति है के क्षत्रंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के कह अधीन है के रोजी रजा कह रही मेरे हक है के पाक बे ऐब है के गय बुल गैब है के अफवल गुनाह है के शाहन शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजग्रही है के कर्मंग करीम है के सर्वंग करी है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है सदैव के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र धान्य है के सर्वत्र गुण है के सर्वत्र भावन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेष है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलम है के साहिब कलाम है के हुसन रजू है तमाम रजू है हमेशुल सलाम है सलिखत मुदाम है गरीबुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुल निदान है रिफुल अजीम है रजाय की यकीन है अनेक उल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवास है गरीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है जर मुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त पराज है सदा सर्वसाज है समस्त सलाम है सदैव अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आदि रूपे अनाद स्वरूपय अनंगी अनामे दृभंगी दृकामे दृभर्घं दृबाध्ये अगंजे अगाध्ये शुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुक्त स्वरूप है अछिज है अशूत है के नरकं प्रणास है प्रसुल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुक्त स्वरूप है परजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंदो अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपरम है कर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अतूत है अनाश है उदास है तंद है अबंध है अभक्त है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगह है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपुर छंद उत्व प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंगयता सर्वं हर्ता सर्वंकर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद उत्व प्रसाद नमो नरकनाशे सदैव प्रकाशे अनंघं स्वरूपे अपंघं विभूते प्रमादं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पौत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात नरसागं श्रीक है मितु अमीक है सदैव प्रभा है जय है अजाय है भगवती शांत त्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है बेसु सलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसन चिराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजगृहिंद है गरीमुल कुमार है के हुसन जमाल है गरीमुल खराज है गरीबुल निवाज है रिफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंग प्रणास है समस्त निवास है गंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्त जुबा है के साहिब करा है के नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है के सर्वुल गवान है हमेशुल जवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है देशुल

कर विष्णु प्रकाशा सगल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की ओ वेद राज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जग

कह मन वसिया वाजे शब्द कनीरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तीरै साचा नाम मेरा आधारू साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन

चोटी काल गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज उस समय नु बयान कर रहे हैं कि हे इंसान, एक दिन ऐसा समा आना है। तो सोच रहा है ना, बचपन है, खा पी के हंडा लवां, जवानी च नाम जप लवांगे। जवानी आ गई, हुण दुनिया दे रंग तमाशे वेखण दा समा है, दुनिया दे रंग मानण दा समा है, वडेपे विच नाम जप लवांगा। हुण वडेपा आ गया, सारा जीवन इंज ही व्यर्थ गवा दिता। कई ऐसे हिरदे मिलते ने, कहते ने जी हुण थोड़ा समा कमाई कर लईए, माया जोड़ लईए, कबीलदारी नजिठ लईए, फिर की करना, फिर नाम जपा कर जपया कर, फिर बाणी की संथ्या भी लै लैनी है, तो बाणी पढ़िया करनी है, फिर गुरु दे चरणा विच सेवा करिया करनी, फिर बस एक बारी न्याणे ब्याह लईए, कबीलदारी नजिठ लईए, थोड़ा जिहा बस आ घर दीआं किश्तां रहनियां पूरियां कर लईए, आ बस थोड़ा ही रहिंदा महाराज। पर ये नहीं इस समय का नहीं पता कि काल ने आके चोटी तो फड़ लेना सात संगत। चोटी काल गई, ये नहीं पता। गुरु तेग बहादुर महाराज कह रहे ने, भाई रब ने हुण शरीर दे विच भी बल दिता होया है, तंदुरुस्ती भी दिती हुई है, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, बल भी है, समा भी है, क्योंकि परमात्मा की जिहड़ी भगती है ना, परमात्मा का जिहड़ा नाम जपना है, गुरु दे चरणा विच चौंकड़ा मार के बैठना है, ये बैठण का बल भी ता ही होगा जदों तंदुरुस्त होएगा, जदों शरीर साथ देगा। फिर एक दिन ऐसा समा आना है, इस शरीर ने साथ देना बंद कर देना, फिर डॉक्टरां दी अपॉइंटमेंटां, डॉक्टरां दे चक्कर, फिर एक दिन ऐसा समा आना है डॉक्टरां ने भी कहना जी हुण तां बस सेवा ही कर लो, हुण तां थोड़े दिनों की खेड है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहिंदे ने उस समय, फिर जदों शरीर नूं रोगां ने घेर लिया, डॉक्टरां ने जवाब दे दिता, जिन्हां दे लई सारा कुछ करदा सी उह भी कहिंदे ने जी पिता जी हुण साढ़े कोल समा नहीं है, असी कम्मां ते भी जाना है, असी अपनी जॉब भी करनी है, साढ़े कोल तुहाडे लई भी समा नहीं है। मैं वेख रहा हाँ इत्थे सियाणे बजुर्गां दे लई रहण वास्ते गौरमेंट वल्लों आश्रम बने हुए ने, बिल्डिंगां बनियां होईयां ने, पैसे लगे हुए ने, पैसे भी आ रहे ने, रह भी रहे ने, पर जिहड़ा सुकून बजुर्ग नूं अपने पुत नूं अपने हिरदे नाल ला के मिलता है, वह कितने बिल्डिंगां विचों मिल जूगा। जिहड़ी खुशी सियाणे बजुर्ग नूं अपने परिवार के विच बैठ के, अपने बच्चों के विच बैठ के, अपने पोतरियां दे नाल खेलदियां खुशी मिलती है, तंदुरुस्ती मिलती है, कि वह बिरध आश्रम विच मिल जूगा? कदे भी नहीं मिलूगा। मैं ऐसे भी वेख रहा हाँ वड़े वड़े तरनाड़ अपने आप नू बहुत वड़े वड़े समझने वाले, उन्होंने भी अपने बजुर्ग बिरध आश्रम छड़े हुए ने, तो जो उन्होंने बजुर्गों नू जाके मिलीदा ना, किवें माता जी किवें हो, सेहत किवें है, बस उन्हां दी उन्हां दे अखां दे विचों निकले हुए हंझू ही दस देंदे ने भी की हालत है, ये त्रासदी है।
ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਲੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਫਿਰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇਆ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਬਚਪਨ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਰਹੇ।

सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मण सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्ची तुदा खैला करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्ची।

मूर्ख पंडित हिकमत हो जे संजे करे प्यार तरमी तरम करे गवावे मंगे मोक दुआ जति सदावे जुक्त न जाने छड़ बह कर बार सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आखे पत परवाना।

0: मन की मल जाए, अमत नाम रिद माहे तुमाए।
1: प्रभ जी बसहे साध की रसना, नानक जन का दासन दसना।
0: प्रभ कौ सिमरे से तनवंते, प्रभ कौ सिमरे से पतवंते।
1: प्रभ कौ सिमरे से जन परवान, प्रभ कौ सिमरे से पुरख प्रधान।
0: प्रभ कौ सिमरे से बेमोह ताजे, प्रभ कौ सिमरे से सर्व के राजे।
1: प्रभ कौ सिमरे से सुखवासी, प्रभ कौ सिमरे सदा अबनासी।
0: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला।
1: प्रभ कौ सिमरे से पारि उपकारी, प्रभ कौ सिमरे तिन सद बलहारी।
0: प्रभ कौ सिमरे से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरे तिन सुख बिहावै।
1: प्रभ कौ सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरे तिन निर्मल रीता।
0: प्रभ कौ सिमरे तिन अंधक नेरे, प्रभ कौ सिमरे बसे हर नेरे।

0: अष्टपदी।
1: साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत।
0: साध का संग मिटा अभिमान, साध का संग प्रगटा सुज्ञान।
1: साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत निबेरा।
0: साध का संग पाए नाम रतन, साध का संग एक ऊपर जतन।
1: साध की महिमा बरने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी।
0: साध का संग गोचर मिला, साध का संग सदा पर फुला।
1: साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा।
0: साध संग होय सब की रेन, साध के संग मनोहर बैन।
1: साध के संग न कतहु तावे, साध संग अस्थित मन पावे।
0: साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न।
1: साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत।
0: साध संग किस्यो नहीं बैर, साध के संग ना बीगा पैर।
1: साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा।
0: साध का संग ना ही हो ताप, साध का संग तजा सब आप।
1: आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई।
0: साध का संग ना कबहू तावे, साध का संग सदा सुख पावे।
1: साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह।
0: साध का संग बसा थान ऊंचा, साधु कै संग मैल पहुंचा।
1: साध के संग दृढ़ है सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म।
0: साध के संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान।
1: साध के संग सब कुल उदार है, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार है।
0: साधु कै संग सो धन पावे, जिस धन ते सब को वरसावे।
1: साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग सो बासुर देवा।
0: साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन।
1: साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म।
0: साध के संग नहीं कश काल, दर्शन भेटत होत निहाल।
1: साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै।
0: साध के संग इहा उहा सुहेला, साध संग बिखरत हर मेला।
1: जो इच्छे सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावे।
0: पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै।
1: साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ।
0: साध का संग ना मन के बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै।
1: साध के संग लगे प्रभ मीठा, साधु के संग कट कट डीठा।
0: साध संग भई आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग।
0: साध की महिमा वेद न जान है, जेता सुनह तेता बख्यान है।
1: साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर।
0: साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच।

0: ज्ञानी सदा सा जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी का घर सदा आनंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता
0: ब्रह्म ज्ञानी कै हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करा प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जान भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाक्षर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवा नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुक्त जीव का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी नाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ।

0: राष्ट्रपति
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्श
0: पर क्रिया रूप न पीखै नेत्र साध की टहल संत संग हित गुर प्रसाद दिखया पर हरा मन की वासना मन पे तरा
1: पंच दोख ते रहत नानक कोट मते को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए भिन्न
1: करत होवे नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू फल की इच्छा नहीं बाचा केवल भक्त कीर्तन संग राचा आप दृढ़ अवरा नाम जपावै नानक वैष्णो परम गत पावै।